चित आवन का सबका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत देग।

पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब आते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार आते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेतानियां दे तान ने उटियां दी ओट।

0: नानक तग न तुटै जे तग होवे जो महला पहला।
1: नाय मन्ने पत उपजै सालाही सच सूत,

0: ज्ञान करे तो महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड़, अखी सुत वेखना पर त्रै पर धन रूप, कन्नी सुत कन पै लाए तबारी खा।

आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाइए एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन एक उप

कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहि जै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तो सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत सात जोग तै मान्यो शल्यो बलवावन पायो त्रेत तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो उगर सैन को राज अपह भगत जन दियो काल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फुरमायो इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिना सो ऐसा हर त्याईये मेरे जियड़े तां सर्व सुख पावह मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हालत पलत मुख उजल होई है नित त्याईय हर पुरख निरंजना जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी बड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना

सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी मोर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह।

पूज अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत जुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ भावे सरवर मह हंस प्राण पत पावे गौर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत जुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ पावे

राख राख चरण धरे विचारी, दुविधा छोड़ भय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस हंस मह सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर।

तिर पवन जोत रहे लिव लाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत बछल भय काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे।

जानम पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे। कह तो पढ़ तो सुन तो एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक। जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागै।

0: सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दसंदास तुद आगे बिन बता।
1: श्लोक पवन गुरु।

आय तेरा अंत न पारा वर्या। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसन तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सर्वरड़ पैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। पांक जो मोह पगन

डोबियलें मन एक न चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवन भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया अवर काज तेरे कित न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दोष्ट सबे तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लेहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कांता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जीरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोस्त जीते उठवाति उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई।
एक बार जन तुम्हें संभार, काल फांसते ताहे उबार।

सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बेसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ।

श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्या बताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोला जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादिया चालगा मुक्तिया हठगा जपगा तपगा जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया।

चोर जार जुआर हों, पार कर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देस ठगंदा। काम क्रोध मद लोभ मोह, अहंकार करंदा। विश्वास घाती अकिरत कण, मैं को न रखंदा। सिमर मुरीदा ढाडियां, सतगुर बखसंदा। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। ओहो अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निसतारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेवी, एहन ससहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सहांदे।

रतन न शपेश पाया, हर गुण कहते कहन न जाई। जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रामत सुनत सुख श्रवना।

0: ओखे जह देखा तह सोई रसना रामत सुनत सुख श्रवना चेत चेते सुख होई कह पीखन दोए नैन संतोखे जह देखा तह सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तना श्री महल।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहां दैसाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। सत

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा।

0: लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखल करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमै सो कच निकच महला पहला
1: वड्डे वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सचने आओ वड्डी वड्याई जा ने चलता वड्डी वड्याई जा ने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछ ना दा।

लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण। लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करते करुणा किया लिखया आवन जान। नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू।

0: से। श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़िया जेते बरस परस, पड़िया जेते मास, पड़िया जेते आर जा, पड़िया जेते सास। नानक लेखा एक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया तीता कड़िया, बो तीर्थ पव्या तीतो लव्या, बहु पीख किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया।

महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा।

पौड़ी तर कंजरा को दूध पाया तीन खसम ते आया इना जनता के वस उसने दूध के जब तो पाया एक नानू तुम लाख को दूध खवाया गौर कृपा ते जाने जित दूध बुझाया सहजी सच माया सहजी सच माया।

फूले सुत दारा से प्रीत ले। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम।

0: राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुर सह चटिया। तुद डिठे सच्चे पात साह मल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वडहंस महला तीजा। रसना हर साद लगी सहज सुभाई। मन तृप्तिया हर नाम त्याई। रसना हर साद लगी सहज सुभाई। मन तृप्तिया हर नाम त्याई। सदा सुख साचै शब्द विचारी। अपने सतगुर विटहौ सदा बलहारी। रहाओ अखी संतोखिया एक लेवलाई।

बन में रंग किया, कल में वेद अथर बन हुआ, ना खुदाई अलो भया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे।